गोपाल महोत्सवादि सकलै रावेष्टितं सुन्दरम् रासकीर्णन तत्परं हरिहरं

0: अब आप ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे एक विद्यार्थी को अपने जीवन में प्राइमरी से लेकर के और एमए तक पढ़ाई करनी होती है, इसी प्रकार की पढ़ाई हमारे अध्यात्म की है, ज्ञान की है।
1: So in the same way, like the teaching starts from the first primary class going all the way to masters and PhD, the similarly the teaching is in adhyatma, in the spirituality.
0: Hamare adhyatma mein, religion mein, dharma mein, primary ki 10 पुस्तके हैं।
1: In the first class of our in Hindu Dharma and religion and spirituality, there are 10 basic entrance books, primary books.
0: धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दर्शकम ग्रस्त लक्षणम धर्म लक्षणम। पहला है धैर्य, धृति, धृति मनी धारण करना,
1: सो टू टू एंड्यूरेंस।
0: जैसे अभी सिस्टर गा रही थी
1: पेशेंस,
0: कि हमारे साथ विश्व गुरु जी है, हमको कोई समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, इसी को कहते हैं धीरति, पकड़।
1: So this is like when Vishwa Guruji is with us and we tolerate or we are ready to support or bear everything what is happening around him.
0: Guruji ne jo aapko mantra diya hai, upadesh diya hai, aur apna lakshya bataya hai.
1: So whatever the Vishwa Guruji told, Guruji gave you the mantra, the teachings and all what you have to do,
0: us par pakad rakhna,
1: you have to follow,
0: isko dhirti bolte hain.
1: This is called dhirti,
0: kshama,
1: endurance, patience.
0: Koi chhota aadmi agar koi galti kar jata hai to bade aadmi ko उसको क्षमा करना चाहिए। जैसे कोई क्षमा भी मांग लेता है, कोई क्षमा कर लेता है। आई एम वेरी सॉरी।
1: सो फर्स्ट वन वॉज पेशेंस, द सेकंड वन इज टू फॉरगिव। सो व्हाटएवर हूएवर डज समथिंग, यू आइदर फॉरगिव टू देम और यू फॉरगिव टू अदर्स।
0: प्राइमरी की शिक्षा में जो वाइफ हस्बैंड है, पति पत्नी है, उनको साथ बैठ करके धर्म और भगवान का चिंतन करना चाहिए।
1: सो इन द फर्स्ट क्लास टू द हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड थिंक अबाउट गॉड।
0: धृति क्षमा दमोस्तेयम प्राइमरी में है, किसी भी वस्तु की, पैसे की, अन्न की, धन की चोरी नहीं करना, नहीं करता है तो वो उसमें पास हो रहा है।
1: द थर्ड स्टेप इज नो नॉट स्टील, व्हाटएवर मनी थिंग्स और समथिंग यू हैव दे शुड नॉट स्टील।
0: पवित्रता,
1: प्यूरिटी,
0: पवित्रता बहुत जरूरी है। मैं प्लेन में सफर करता हूँ तो केवल वहाँ ईयर लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि वो लाते हैं, एक्सक्यूज मी, Veg, non-veg, veg, non-veg.
1: So purity, like in an aeroplane, I take only water because air. Because the people are offering veg, non-veg, and all these impure things.
0: वो पवित्र नहीं होता, शोध मैंने शुद्ध नहीं होता.
1: They are not pure, they are not clean.
0: तो धृति क्षमा दमयस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रहा. हमको ऐसा खाना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए जिससे कि हमारा नेचर ऊपर को बढ़े, हम उसमें ऊपर को आवें. ऐसा खान पान आहार व्यवहार हमको रखना चाहिए.
1: सो वी शुड ईट ड्रिंक थिंक लिसन और व्हाटएवर वी डू शुड बी इन अ सच अ वे दैट our life grows, that we are going upwards in the upper trajectory.
0: Hamare Vṛddhāraṇak Upanishad mein likha hai, aapka ahar shuddh hoga.
1: In Brihadaranyaka.
0: Ek minute. Ahar shuddh hoga, vyavahar shuddh hoga. Ahar shuddho satya shruti. To aap Vishwa Guru ji ki kahi hui adhyatmik baaton ko संभाल सकोगे, पकड़ सकोगे, कैच कर सकोगे.
1: In Brihadaranyaka Upanishad it says, if your deeds and food is clean, you will understand whatever Vishwa Guruji is trying to teach you.
0: धीर विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम ग्रस्त लक्षणम. धीर विद्या बुद्धि माइंड, इसको बुद्धि को सदुपयोग में लाना चाहिए. धी मनी बुद्धि. और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धि है, धी मनी बुद्धि है, माइंड, ये जो है ये शुद्ध खाने से पावरफुल हो जाती है.
1: सो आवर इंटेलेक्ट एंड माइंड शुड बी for good, it should be pure, and this happens from the food.
0: Vidya.
1: Knowledge.
0: Knowledge. जिसको knowledge कहते हैं वो विद्या. विद्या उसको कहते हैं जो आपको सुलझावे, उलझावे नहीं, सा विद्या या विमुक्त ही, जो आपको उलझावे नहीं सुलझावे उसका नाम है विद्या.
1: विद्या और नॉलेज इज दैट व्हाट फ्रीज यू, नॉट व्हाट बाइंड्स यू, व्हाट डजंट कवर यू और व्हाट मेक्स यू बाउंड, व्हाट मेक्स यू फ्री.
0: आप उलझे नहीं हैं, इस बात का प्रमाण ये होता है कि आपको मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं, ईर्ष्या नहीं, ममता नहीं, और संसार के प्रति अट्रैक्शन नहीं है.
1: So you are pure when you are not having all this attachment to this world, mad, moh, rag, dvesh, and so on, all this.
0: हमारे वेदों में सर्वप्रथम दो बात की शिक्षा दी गई है, सत्यम बदो धर्मम चरो. सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो.
1: In Vedas there are two teachings which are taught on the beginning, tell the truth and follow the dharma, follow your duty.
0: A course aapka primary ka 15 minute mein pura ho gaya.
1: So your the first class of the spirituality is done in this 15 minutes.
0: Ek hi aadmi ke liye, ek hi sadhak ke liye, एक ही शिष्य के लिए, एक ही भक्ति के लिए फाउंडेशन में प्राइमरी बहुत जरूरी है. जो उसके घर से साधना शुरू होती है.
1: So for any sadhaka, any bhakta, any disciple, for any human being, all these primary things are necessary as a base.
0: उसके बाद में उसी साधक के लिए रास्ते अलग अलग नहीं है कि योग अलग है ज्ञान अलग है भक्ति अलग है ऐसा अलग नहीं है एक ही रोड के अलग अलग नाम
1: So there is only one road with the different names. One, somebody is calling yoga, somebody is calling gyan, somebody is calling this or that. There are no different roads.
0: Bombay Surat Road, primary. Surat, Baroda, middle. Baroda, Ratlam, high. Ratlam,
2: He's telling the map of India.
0: एक ही रोड के जैसे बम्बई से सूरत बम्बई सूरत रोड नाम हो गया और जब सूरत पहुंचते हैं तो वहां से सूरत बड़ौदा रोड हो जाता
1: सो लाइक व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम बम्बई गोइंग टू सूरत दिस इज कॉल्ड बम्बई सूरत रोड व्हेन यू क्रॉस सूरत इज कॉल्ड सूरत Baroda Road, and then afterwards continue. So in the same way, all the spiritual paths are basically going to the same direction.
0: Middle ka arth hota hai yog mark. Jis mark ka naam, jitna ka mark ka naam yog hai, usko yog bolte.
1: The middle school is yog.
0: Yog mein aapke liye 8 pustak hai, jinko aapko dhyan de karke पढ़ के पास होना
1: सो इन द योगा देयर आर 8 बुक्स इन विच यू हैव टू स्टडी एंड देन पास
0: यम नियम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि पुस्तक यम यम का अर्थ होता है अपने को यमयति नियमयति दंडयति स्वान अपने को नियमित करना उस पुस्तक का नाम है नियम
1: द बुक विच टेल्स अस हाउ टू कंट्रोल आवरसेल्व्स इज कॉल्ड नियम
0: नियम यम अपने को रोकना
1: यम इज द बुक विच टेल्स अस हाउ टू स्टॉप आवरसेल्व्स
0: का अर्थ होता है जो योगा के लिए कहा हुआ योगश्चित्त वृत्ति निरोधा वो नियम हो गया
1: सो नियम इज दिस फर्स्ट लाइन दैट व्हेन योर थिंकिंग स्टॉप्स व्हेन योर
0: नियम मींस कानून को पास पालन करना उसको धारण करना उसको अपने जीवन में लागू करना
1: टू फॉलो द लॉज एंड रूल्स टू पुट इट इन योर लाइफ दिस इज कॉल्ड नियम
0: यम नियम के बाद में आसन है
1: After that is yes.
0: बॉडी को सेट करना बॉडी में जो पॉइंट है उन पॉइंटों को हाईलाइट करना और उसके साथ साथ में जो है जिसको प्राणायाम बोलते हैं हमारी बॉडी ईयर से चल रही है उस ईयर को शुद्ध रखना इसका नाम है प्राणायाम और जो शरीर है उस बॉडी को फिट रखना यह है आसन
1: सो द थर्ड बुक आसन टेल्स अस हाउ टू कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हाउ टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड सो ऑन And the fourth book about pranayama is how to control the air and use it for the purification.
0: Asan se aapki body shuddh hoti hai. Aur isi prakar se pranayama se aapke andar 5 ear hai. Wo 5 ear shuddh hoke aur theek se delivery service karti hai aapki body ke liye. सामान की मटेरियल की सामान की
1: सो लाइक द आसनास प्यूरिफाई द बॉडी मेक इट क्लीन द सेम वे द प्राणायाम डज फॉर ऑल दिस फाइव प्राणास फाइव टाइप्स ऑफ एयर which then serves our body properly.
0: उसके बाद में प्रतिहार आता. प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है salt and sweet. समझ गए? प्रतिहार मनी अपने अंदर चिंतन करना और बाहर से कॉन्टेक्ट सब खत्म करना, इसको प्रत्याहार बोलते हैं.
1: सो प्रत्याहार इज टू विथड्रॉ वन सेल्फ फ्रॉम आउटसाइड एंड मेक वन सेल्फ इनसाइड.
0: अभी हमारे अध्यात्म में इंडिया में लोग योगा का बहुत प्रचार करते हैं और दो ही बात बताते हैं, आसन और प्राणायाम. फाउंडेशन में जो यम नियम है वो नहीं बताते, दो ही बात बताते हैं, आसन प्राणायाम. फिजिकली बॉडी के लिए बहुत सरल होता है.
1: सो nowadays इन द वर्ल्ड इट्स वेरी फेमस द योगा, इट्स ओनली मेंशनिंग जस्ट आसनास एंड प्राणायामस, व्हाट इज गुड फॉर द बॉडी. But yama and niyama, the rules of outer and inner behavior that nobody tells.
0: आसन प्राणायाम के बाद प्रतिहार होना चाहिए, लेकिन आज के योगी जो है व्यापार शुरू कर देते.
1: So after the asana and pranayam, pratyahara should come, but people started business before pratyahara.
0: ये मेरा toothpaste है, ये मेरा ब्रश है, ये मेरी वैसलीन है, ये मेरे स्किन क्रीम माई.
1: So this is my toothpaste, this is my skin cleaner.
0: ये मेरा च्यवनप्राश है, ये मेरा ग्लूकोज है, ये मेरा वो है. तो प्रतिहार जहाँ शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए था, वहाँ पर व्यापार हो गया, व्यवहार हो गया, विस्तार हो गया.
1: So
0: इसलिए वो योगा के लिए अच्छा नहीं है.
1: So instead of pratyahar, which means coming inside, is vyapar, which means expand. So this is not good for yoga.
2: Guruji, ye baitha na.
3: Baba Ramdev ji.
0: Kaha? Aaja wo. Hamara chela hai wo. Inko pata hai sabko. To usme ye hai. Ab iske baad mein hota hai dharana. Dharana, जो स्वयं का जजमेंट है, स्वयं की स्वीकृति है, स्वयं का निर्णय है, स्वयं की कैपेसिटी है और स्वयं की घोषणा है, उसको धारणा बोलते हैं.
1: सो धारणा इज द नेक्स्ट बुक, फिफ्थ बुक, विच सेज अबाउट इट्स आवर ओन कैपेसिटी, आवर ओन कैपेबिलिटी एंड सो ऑन.
0: अभी आप देख लीजिए धारणा किसको बोलते हैं. ये मेरा संगीत वाला है. धारणा किसको बोलते हैं? ये मेरा संगीत वाला. ओ भाई,
1: सो यू लुक,
0: संन्यास लेगा?
1: मींस धारणा
2: नहीं
0: लेगा. नो धारणा.
1: धारणा मींस एक्चुअली आल्सो कंसंट्रेशन. सो यू लुक एट माय द ढोलक पर्सन इफ ही वांट्स टू हैव संन्यासा. सो ही सेड नो थैंक यू.
0: हमको एक व्यक्ति ने कहा, आपने अच्छा किया, आपने अपनी 21 पीढ़ी पार कर ली, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत महान हैं.
1: Somebody told me, you are a great person, you cleaned and purified and you cross over 21 of your family lineage, all 21 generations crossed over this samsara, you are a great person.
0: हमने अपनी चादर उसके गले में डाली, तुम भी अपनी परंपरा को, पीढ़ी को पार करो, तुम भी संन्यास ले लो. उसने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नो नो नो नो नो.
1: So then I said okay, I took my shawl and I put around that person's neck and said okay, now you become a sannyasi, you also take your 21 generations across this world. I said no, thank you so much.
0: तो इसका मतलब है कि वो धारणा में नहीं है, उसकी धारणा अच्छी नहीं है, उसका लाइफ जजमेंट या लाइफ जो उसकी प्राप्ति है वो पूरी नहीं है.
1: सो डिजायर्स इन दिस लाइफ दे आर नॉट फुलफिल्ड फॉर दिस पर्सन एंड हिज कंसंट्रेशन टुवर्ड्स गॉड डेडिकेशन इज नॉट देयर.
0: ध्यान, इसके बाद में ध्यान आता है. ध्यान में जो है ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए.
1: Before meditation, you need some knowledge.
0: एक जो है वो ध्यान बिजनेस बन गया.
1: And this knowledge became now business.
0: आप वहाँ गए, थोड़ी देर आपको घंटा दो घंटा बैठाया और बड़ी बड़ी बातें की, तो वो एक बिजनेस है. लेकिन ध्यान का ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए.
1: So like this now, these meditation classes and so on, they are there just to make, it's like a type of business, but before you actually start with meditation, you have to have some knowledge.
0: अच्छा ये बताइए, मैंने आपको आपको देना है मनी, तो मनी 10 रुपए लोगे कि 50 लोगे कि 100 लोगे कि 500 लोग 500 का नोट लोगे, कौन सा लोगे? जब मैं कहूँगा कि मेरे से मनी ले लो, मनी रखा है, तो कौन सा नोट लोगे?
1: So if I tell you please take the money from me and then I give you 5, 10, 20, 50, 100 or 500 rupees, which one you will take?
0: अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इतने में से कौन सा नोट लेंगे आप?
1: From all of
0: 500 these, का ना, 500 का.
1: From all of this, you will take 500. 500
0: का ठीक है ना?
4: 2000
0: का बंद कर दिया मोदी ने यार. 2000 दे दे. 200 का नहीं. कैसी बात कर रहा है? अगर हम आपको दे रहे हैं तो 500 का लेगा ना आदमी?
1: So
0: नहीं लेगा क्या?
1: Yes. So if I give you 500 rupees, you will take 500 rupees. You will take less.
0: सभी अभी शर्मा रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा तो.
1: Now we are like
0: again hand, yes.
1: Now we are a little bit ashamed, but when the opportunity comes, we will definitely take 500 rupees.
0: ध्यान उसी का होता है जिसकी कीमत आपके दृष्टि में ज्यादा होती.
1: So you can do ध्यान, ध्यान which when you value something really much.
0: यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन स्तोपि दुखेना गुरुणा न विचालयेत. तो जिसकी आपकी दृष्टि में महिमा होती है, कीमत होती है, महत्व होता है, उसी को आदमी याद करता है.
1: So whatever is valuable in your eyes, whatever you think is good, whatever you think is best, that actually you concentrate on.
0: आपका आपके जीवन में आपके बीवी बच्चे परिवार का महत्व है. अगर आप 2 घंटा ध्यान केंद्र में रहोगे भी और वो आपको कुछ बताएगा भी, तो थोड़ी देर में वहाँ से बाहर आने के बाद आपका ध्यान अपने बीवी बच्चों की तरफ जाएगा, क्योंकि उनका महत्व आपकी लाइफ में ज़्यादा है.
1: Like if you have children, wife or husband, and then you go for meditation, even in this, after the meditation, you will continue thinking, or during the meditation, you will continue thinking on them, because they are something valuable in your life. You
0: मनुष्य के जीवन में परिवार होता, संसार होता, लेकिन मनुष्य का ज्यादा ध्यान गोल्ड पे होता.
1: There is a
0: family. क्योंकि गोल्ड कीमती होता है, महत्व का होता है, उपयोगी होता है.
1: The for any human, the life, the family and the samsara, this world is valuable, but the gold is most valuable.
0: इसी प्रकार से जो है समाधि आती है, समाधि. हमारे किसी सृष्टि के सिस्टर का नाम भी समाधि था.
4: दिल्ली में
0: हाँ, दिल्ली में समाधि सिस्टर है. समाधि का अर्थ होता है कि ना आप संसार में हैं, ना आप शरीर में आपका कोई कॉन्टैक्ट है, अट्रैक्शन कॉन्टैक्ट वहाँ कहीं पर नहीं है. केवल ओनली आपका अपने पर ध्यान है, उसको समाधि बोलते हैं.
1: समाधि इज व्हेन यू feel only yourself, there is no connection with your body, there is no connection with this world, you have connection only with yourself.
0: हमारे विश्वगुरु जी के ध्यान में ध्यान शिक्षण में दो प्रकार की समाधि होती है, एक सविकल्प एक निर्विकल्प.
1: There are two types of samadhis, sarvikalp and nirvikalp.
0: Sabikalp samadhi usko kehte hain jahan par sadhak pakka hai aur usko upar uthane ka sadhan bhi sachcha hai aur jahan ki uska god jo usko pana hai wo bhi uski samajh mein hai isko bolte hain sabikalp samadhi.
1: So the Savikalp Samadhi is when there is a God who he understands and there is his desires, what he wants, so with some desire or with some aim.
0: Iske baad mein Nirvikalp Samadhi hai, jahan par na to shishya rehta hai, na guru rehta hai, ye dono God mein milkar ke God ho jate hain. Aham Brahmasmi.
1: So in Nirvikalpa, there is neither disciple, there is no guru. They both merge into the God. Aham Brahmasmi, I am Brahma.
0: ये हो गई. अब 12वीं क्लास की, 16वीं क्लास तक भाग तो नहीं जाओगे.
1: So this is 12th class.
0: अब 12वीं क्लास क्या है? भक्ति, जिसको हम भक्ति कहते हैं.
1: So 12th class is भक्ति.
0: भक्ति में, भक्ति के कोर्स में 9 पुस्तकें हैं. 9.
1: In the course of bhakti there are 9 books.
0: 9 पुस्तकें. बात सुनना तो केवल विश्व गुरु जी की सुनना, बाकी को सबको इग्नोर कर लेना. नहीं, हमने सुनना चाहते.
1: So first
0: श्रवण भक्ति.
1: So first is listening. So listen only what Vishwa Guruji says, nothing else.
0: अंदर से याद करो तो ओनली विश्व गुरु जी को याद करो, दूसरे को याद नहीं करो. ये कीर्तन है.
1: कीर्तन और रिमेम्बरिंग इज दैट यू रिमेम्बर ओनली द वर्ड्स ऑफ विश्व गुरु जी, नथिंग एल्स.
0: याद करो तो एकमात्र गुरु और गोविंद को याद करो, दूसरे को नहीं. ये स्मरण भक्ति है.
1: रिमेम्बरिंग द स्मरण भक्ति इज व्हेन यू remember only God and Guru, nothing else. There is nothing except God and Guru.
0: Surrender. चरणों में झुक जाना, चरणों में समर्पित हो जाना, चरणों में आश्रय पाना, ये पाद सेवा भक्ति है.
1: So these are the different ways how to surrender yourself to the lotus feet of Master.
0: पूजा पूज्य समझो तो गुरु गोविंद को, पूजा करो तो गुरु गोविंद की. दूसरे की किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे मनुष्य को भटकने की संभावना होती है.
1: सो इफ यू डू सम पूजा, इफ यू डू सम सेरेमोनी, डू द सेरेमोनी फॉर गॉड एंड गुरु. इफ यू फॉलो समबडी, फॉलो गुरु एंड गॉड, बिकॉज अदरवाइज यू कैन गेट लॉस्ट.
0: अपनी आवश्यकता और गुरु गोविंद का महत्व समझ करके जब वंदना की जाती है, स्तुति है, वंदना है, वंदन है, उसको वंदना भक्ति बोलते
1: हैं. When we start glorifying the importance of Guru and God, then this is called vandana. This next
0: दास्य, सेवक, शिष्य, उसको दास दास्य भक्ति कहा गया है.
1: नेक्स्ट वन इज सर्विंग, टू सर्व द गुरु एंड गॉड.
0: दास, अपना अपना अस्तित्व, अपना महत्व, अपना अहम आकार प्रकार स्वरूप मिटा करके गुरु में समाहित हो जाना उनकी सेवा में, उसको दास बोलते हैं.
1: Das or servant is when you renounce all of your I, all of your egoism, and then you dedicate your life to the service of the Guru.
0: जब आपका मन शुद्ध हो जाता है और गुरु गोविंद को विश्वास हो जाता है, तो उस समय पर गॉड, भगवान, गुरु आपको अपना मानते हैं और आपके साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं उसको सखा भक्ति बोलते हैं.
1: सखा भक्ति इज द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन यू यू बिलीव एंड ट्रस्ट योर गुरु सो मच दैट ही आल्सो कैन बिकम लाइक योर फ्रेंड.
0: हमारे सनातन धर्म वैदिक मार्ग भक्ति मार्ग में धीरे धीरे धीरे धीरे अर्जुन जब कृष्ण के नज़दीक गए तो भगवान ने उनको फिर दास नहीं रहने दिया, सेवक नहीं रहने दिया, उनको सखा बना दिया. सखा मित्र फ्रेंड.
1: When Arjun was with Krishna, he didn't, after some time, he stopped being his servant, he stopped being his sevak, he became his friend.
0: इसके बाद में आत्मनिवेदन भक्ति आती है. बोलो महाराज जी, अब मैं आपके साथ ही कल सुबेरे चला चलूंगा. चलो इसकी तरफ से मैंने बोल दिया. कहते आत्मनिवेदन.
1: आत्मनिवेदन इज व्हेन यू से आई एम गोइंग विद यू टुमारो मॉर्निंग, आई विल गो विद यू व्हेरेवर यू वांट.
0: वो आत्मनिवेदन है. आत्मनि हमारा ये निवेदन है कि हम आपके यहाँ एडमिशन चाहते हैं, एंट्री चाहते हैं, और अब हम उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं जिस कंडीशन में हमारे गोविंद रहते हैं, गॉड रहते हैं.
1: सो इट्स रिक्वेस्ट ऑफ द सोल दैट आई वांट टू लिव इन दैट कंडीशन, आई वांट टू लिव इन सच अ वे लाइक अ गॉड इज लिविंग.
0: इसके बाद में फाइनल एमए की परीक्षा होती है एक ही आदमी के लिए. वो क्या है? ज्ञान की भूमिका.
1: So the MA, the master degree, is the index of knowledge. It's the last one, or introduction to knowledge.
0: उसमें सात पुस्तकें हैं. उसमें सात पुस्तकें विद्यमान की गई.
1: Seven books.
0: उसमें पहली books क्या है? सुभिच्छा. क्या है भैया? सुभिच्छा क्या है? बोलो गुरुजी. अब मैं आपके पास ही रहूंगा, रह लेना हम काम आना.
1: फर्स्ट बुक इज स्वइच्छा और द ओन डिजायर एंड यू से गुरुदेव आई वांट टू लिव विद यू.
0: अच्छा अब आपको तो हम एक मीडिया बना रहे. अच्छा अब बोलो गुरुजी.
1: बोलो
0: मेरे विचार आपके विचारों से मिल रहे, ले ले संन्यास.

0: The second one is, oh Guruji, I think the same like you, and Guruji says, okay, then take sannyasa.
1: Jab sadhak shishya ka vichar guru se milta hai, usko kehte hain vicharna. Usko kya bolte hain?
0: Vicharna.
1: Usko vicharna bolte hain.
0: Vicharna means thinking. It's like when your thoughts and guru's thoughts are equal. You're thinking like your guru.
1: Tan mansa. Iske baad mein jo hai, pustak hai, tan mansa. Guru se jab vichar milta hai, to jaise badi tanki mein se, पाइप में से पानी आकर घर की छोटी टंकी में आने लगता है, ऐसे ही गुरु का ज्ञान शिष्य में आने लगता है, इसलिए उसको तनमानसा बोलते हैं, यानी कनेक्शन, बड़ी टंकी से छोटी टंकी में कनेक्शन.
0: सो द नेक्स्ट वन इज तनमानसा, व्हेन द गुरु, द नॉलेज ऑफ द गुरु स्लोली स्टार्ट्स टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्मॉल पॉइंट ऑफ शिष्य ऑफ डिसिपल.
1: सत्वापत्ति. अब चतुर्थी जो है ज्ञान भूमि सुविच्छा स्यात, प्रथमा समुदायता विचारणा, द्वितीय स्यात तृतीया तनुमानुसा, सत्वापत्ति चतुर्थी स्यात, पंचमा संस्यात्मका, पदार्थ भावनी षष्ठी, सप्तमी त्रियगास्मृतम. तो चौथी जो भूमिका है, चौथी पुस्तक है, उसके कारण गुरु में और शिष्य में जो है एकता, एक आकार, एक अभिव्यक्ति और एक विचारधारा बन जाती, उसको सत्वापत्ति बोलते.
0: सत्वापत्ति इज द नेक्स्ट स्टेप व्हेन इन गुरु एंड डिसाइपल देयर इज नो डिफरेंस इन देयर थिंकिंग एंड एवरीथिंग.
1: पदार्थाभावनी कहते हैं, पदार्थाभावनी, जैसे आपको चाय याद ही नहीं आवे, कॉफी याद ही नहीं आवे, चटनी याद ही नहीं आवे, रसगुल्ला याद ही नहीं आवे, आइसक्रीम, फिर 15-15 इंजेक्शन.
0: सो द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन यू इवन डोंट रिमेम्बर, यू नो, नाइदर एनी स्वीट्स और एनीथिंग, एनी फूड यू लाइक, देयर इज नथिंग देयर.
1: पदार्थाभावनी का अर्थ यह है कि आपके सामने स्टोन हो और आपके पास में जो है गोल्ड हो, इस दोनों को आप बराबर समझे, इसको पदार्थाभावनी बोलते हैं.
0: पदार्थ अभाव, द डिटैचमेंट फ्रॉम द एनी थिंग्स इज लाइक यू कैन हैव अ स्टोन और यू कैन हैव अ गोल्ड फॉर यू, दिस इज इक्वल.
1: नहीं, पहले असंशक्ति. असंशक्ति ये है, असंशक्ति इसको कहते हैं कि कभी कोई रिलेशन में आपके मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, वाइफ हैं, चिल्ड्रेन हैं, कोई भी है, इनमें आप गुरु को छोड़कर इनमें आपके मन का नहीं जाना, उसको बोलते हैं असंशक्ति.
0: असंशक्ति इज व्हेन यू डोंट थिंक एंड देन यू गो बैक टू योर फैमिली, टू योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन.
1: अब तो हमारा एक ही नारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा.
0: There is only one thing I know. There is nobody of mine, and I am nobody's.
1: पदार्थाभावनी, जहाँ सोना मिट्टी बराबर लगे, कोई भी उपलब्धि, कोई भी प्राप्ति, संसार संबंधी जो अपने को प्रभावित नहीं करती हो, उसको शास्त्र ने असंशक्ति कहा.
0: So only after you get detached for your family and so on, you can come to this detachment from the things from this world, like gold and all these things.
1: हमारे भागवत में श्रृंगी ने साफ दिया था, परीक्षित को तक्षक काटेगा, और लास्ट में तक्षक आया फणा उठा करके, लेकिन परीक्षित डरा नहीं. आप डरोगे जब कोई आएगा, ईयर वो क्या ना बोलते उसको,
0: सांप, सांप, स्नेक,
1: स्नेक, वो आएगा तो आप बैठे रहोगे कि भाग जाओगे.
0: सो लाइक इन द इन भागवत देयर इज दिस कर्स ऑफ किंग.
1: इसको पदार्थाभावनी बोलते हैं कि किसी से भी हमको खतरा महसूस नहीं हुई, डरने लगे। और कृष्ण भगवान ने कहा, नैनम छिंदंति शस्त्राणी, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदंति आपो, न शोषयति मार्ग। आपको शस्त्र नहीं काट सकता, पवन नहीं उड़ा सकता, पानी आपको जो है वो भिगा नहीं सकता है, हवा आपको उड़ा नहीं सकती है। ऐसा आपका स्वरूप है, उसमें स्थित होने का नाम है पदार्थाभावनी। उन पदार्थों का आप पर कोई प्रभाव नहीं, उसको पदार्थाभावनी बोलते हैं।
0: सो दिस इज दैट बुक पदार्थाभाव, द देयर इज नो फियर ऑफ स्नेक्स, देयर इज नो फियर ऑफ डेथ, देयर इज नो फियर दैट फायर विल बर्न यू, that you will drown in the water, that anything will happen with any element. So this is the highest form.
1: Turiya avastha usko kehte hain, jab aapke charon taraf samagri padi ho, vastu padi ho, sab kuch jitna bhi sansar mein wo pada hua ho, aur aapki uske prati koi aap mein koi attraction ya koi vritti ya koi work aap usme nahi karte ho, तो उसको तुरिया अवस्था बोलते हैं।
0: एंड देन आफ्टरवर्ड्स इज तुरिया अवस्था द प्लेस और द माइंड स्टेट व्हेन यू हैव एनीथिंग अराउंड यू एंड देन यू डोंट वांट टू डू एनी वर्क इन दैट, इट डजंट अट्रैक्ट।
1: इस प्रकार से जिसने स्टार्ट किया गुरुजी से, इस प्रकार से उस व्यक्ति को सारी क्लासें और सारी पुस्तकें तैयार करके लाइफ में पास होना चाहिए और गुरु गोविंद को प्रसन्न करना चाहिए, गुरु गोविंद को विश्वास में लाना चाहिए और गुरु गोविंद को ये एहसास कराना चाहिए कि आपने जो हमारे साथ मेहनत की, वर्क की, वो हमने सफल कर दिया।
0: सो इन आवर लाइफ्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वी हैव टू पास ऑल दिस टेस्ट्स एंड वी हैव टू कन्विंस द गुरु एंड गॉड that we did, and then whatever you invented in us, whatever you effort you put in us, it was successful. So we passed all these exams. This Acharyaji is telling to us that we should success, we should successfully pass all Vishwaguruji's tests or effort what he gave. We should fulfill all his wishes.
1: पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
0: श्री दीप नारायण भगवान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। इंद्रदान सम्राट महाराज नंदजी भगवान की जय। राजगुरु महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर शोकनंद भारती जी महाराज की जय।

श्री अलकपुरी समादेव की, देवपुरी समादेव की, श्री दीप नारायण भगवान की, हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी भगवान की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर योगीराज परम पिता परमेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव की, पुण्यानंद भारती जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। सैल्यूटेशन टू अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा, माय एडोरेशन विश्व गुरु जी होली लोटस फीट, रिस्पेक्टेड ऑल द डिवाइन सन्यासीस, ऑल स्पिरिचुअल सीकर्स एस्पिरेंट्स, योगा एंड डेली लाइफ फॉलोअर्स एज वेल द फेलोशिप ऑर्गेनाइजर एंड ऑल द कर्म योगीज, भक्ति योगीज, राज योगीज, ज्ञान योगीज,

देवपुरी स महादेव की, दीप नारायण भगवान की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय। हरिओम।

ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमद्य

जय। देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।

भूचरा हर की आत्मा। श्री दीपनारायण भगवान, शिवानंद जी महाराज की, अलकपुरी जी महादेव, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की।

0: भगवान की
1: जय।
0: देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: की जय।
0: सत्य सनातन धर्म
1: की जय।

0: ओम शलपुरजी महादेव की
1: जय।
0: देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: श्रीदेव नारायण भगवान
1: की जय।
0: हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरजी सद्गुरुदेव भगवान
1: की जय।
0: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरजी योगराज
1: की जय।
0: नंदीश्वर भगवान
1: की जय।
0: शिव शंकर भोलेनाथ
1: की जय।
0: हनुमान पार्वती पते
1: हर हर महादेव।
2: Oh, my God.

0: Sridip Naran Bhagwan ki jai, Shri Sata Gurudeva ki jai.
1: गुरु चरणों में अरसत तीरत है।

0: विद्दू एंड व्हेन इज थिंग एवरीथिंग इज हैव डन देन हाउ दैट
1: Sve je prikazano.
0: Ta da da ga da ti da da ti nam tak.
1: Šiva koji kleše.
0: Da. Kada gri blag bi, kada ga gri gri grag. Da do da ti ka ba dai ta re ge ge ge ge. Ek pair ke andar mein kitna jitna laga karke do hai nindka aur ye जो इतना जो सा था ना इसको तो है सहम सहशास्त्र
1: वो सहस्र चक्र

श्री नारायण भगवान की जय। श्री श्री विष्णु दश परम स्वामी अश्विन गुरुदेव की जय। जुग जुग जीवो महेश्वर नंद जी।

0: तरह भगवान की जय। श्री विश्व गंदा परम स्वामी शंज गुरुदेव की जय।
1: Yeah, repeat now, no?